ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। कई दहाइयां कबल शुमाली कोरियाई एजेंटों के हाथों अगवा किए जाने वाले जापानी शहरियों में से दो के रिश्तेदार पीर के रोज जापान से अमरीका गए हैं। उनका इरादा है कि तमाम मगवियों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने की कोशिशों के सिलसिले में अमरीकी हुकूमती अहदेदारों और कानून साजों से तआवुन तलब करें। इनमें से एक रिश्तेदार योकोता ताकुया अगवा शुदगान के खानदानों के एक ग्रुप के सरबराह हैं। उनकी बड़ी बहन मेगोमी को उस वक्त अगवा किया गया था जब वो जूनियर हाई स्कूल की पहले साल की तालबा थीं। दूसरे जापानी का नाम इजुका कोइचिरो है। अपनी वालदा तागुची याइको के अगवा के वक्त वो सिर्फ एक साल के थे। मज़कूरा दोनों अफराद का मकामी वक्त के मुताबिक जुमेरात तक अमरीका में क़याम का मंसूबा है। रवां हफ्ते आलमी रहनुमा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए न्यूयॉर्क में जमा होंगे। एक आला ईरानी अहदेदार का कहना है कि तेहरान ने जारी तनाज़े के खात्मे के मुज़ाकरात की बहाली के लिए अमरीका को 7 शराइत से आगाह किया है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने हफ्ते के रोज एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये ऐलान किया। ये काउंसिल ईरान की सिफारतकारी और कौमी दिफा की निगरानी करती है। तमाम 7 शराइत की मुकम्मल तफसीलात जाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि अगर वाशिंगटन अपने लिए पैदा की गई मुसीबत से निकलना चाहता है और मजीद उलझने से बचना चाहता है तो उसके पास ईरान के हुकूक और शराइत को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा नहीं है। इस पोस्ट से पहले रजाई ने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सालिस मुल्क कतर के जरिए अमरीका को शराइत से आगाह किया गया है और सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार है। उन्होंने अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी के खात्मे और मुंजमित असासों की बहाली समेत उन शराइत को दर्ज किया जिनका ईरान मुतालबा कर रहा है। उन्होंने फैसला कुन जंग के लिए ईरान की तैयारी का भी इजहार किया। ये देखना बाकी है कि क्या ये शराइत मुजाकरात की बहाली का बाइस बनती हैं। पाबंदियों से बचने के शुमाली कोरिया के तरीकों पर नज़र रखने वाली एक टीम का कहना है कि 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूस में काम करने वाले शुमाली कोरियाई मजदूरों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। टीम का कहना है कि इनमें से कुछ कारकुन फौजी इस्तेमाल के लिए ड्रोन बनाते हैं। कसीरुज्जेहती पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम ने गुज़िश्ता बुध को एक रिपोर्ट जारी की। ये टीम जापान, अमेरिका और जनूबी कोरिया समेत 11 ममालिक ने कायम की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिर तक 15,000 से 30,000 शुमाली कोरियाई बाशिंदे रूस में काम कर रहे थे। इसमें कहा गया है कि कारकुनों में रूस के जमहूरिया तातारिस्तान में वाक़ अलाबुगा खसूसी इकतसादी जोन में तैनात एक ग्रुप भी शामिल है जहां वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए रूसी मुसल्लह अफवाज को फराहम किए जाने वाले फौजी ड्रोन्स की तैयारी में शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की जानिब से 2020 में तालिबान वीजा रखने वालों को काम करने की इजाजत देने के लिए एक कानून में तरमीम के बाद इस तादाद में इजाफा हुआ जिसके नतीजे में शुमाली कोरिया के कारकुनों को तालिब इल्मों के तौर पर भेजने के लिए एक स्कीम बनाई गई। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक बड़ा और शदीद समंदरी तूफान जापान के इजू जजायर के बहुत करीब है। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने टोक्यो के इजू जजायर में ओशिमा कस्बे के लिए 5वें दर्जे का हंगामी इंतबाह जारी किया है। एजेंसी एहलकार लोगों पर जोर दे रहे हैं कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। और हुकूमत जापान के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की कुल आबादी में 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 22 सितंबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के खांतो और टोक्यो के द्वीपीय क्षेत्रों में दुचियन तूफान के कारण रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई है, जिसके चलते व्यापक इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन के मामले पेश आए हैं। ये तूफान अब जापान से दूर जा रहा है, लेकिन मौसम अधिकारी लोगों से उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। मंगलवार सुबह चिबा प्रीफेक्चर स्थित साकुरा शहर के एक आवासीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। खानागावा और चिबा प्रीफेक्चरों में भूस्खलन के कई मामलों की खबर मिली है, जिनमें 6 लोग मारे जा चुके हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं। संभावना है कि वे महासभा से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत करेंगी। ताकाइची स्थानीय समयानुसार सोमवार रात न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर उतरी। प्रधानमंत्री के रूप में वे महासभा को पहली बार संबोधित करेंगी। जापान से रवाना होने से पहले ताकाइची ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं उत्तर कोरिया के अपहरण मुद्दे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के महत्व, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर बल देना चाहती हूँ। ताकाइची ने यह भी कहा कि वे एक मुक्त व खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की रचना की दिशा में जापान की अग्रणी भूमिका निभाने की मंशा व्यक्त करना चाहती हैं। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत करने, ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग करने और एआई व अन्य प्रौद्योगिकी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने जैसे क्षेत्रों पर बल दिया। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के लिए बुधवार से शुक्रवार तक अमेरिका की राजकीय यात्रा करेंगे। ये दोनों नेताओं के बीच इस साल की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले मई में ट्रंप ने चीन की यात्रा की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेता प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि 6 महीनों के भीतर दोनों राष्ट्रपतियों की एक दूसरे के देशों की यात्राएं ऐतिहासिक महत्व वाला मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि चीन सामरिक स्थिरता के द्विपक्षीय रचनात्मक संबंधों के आयाम बढ़ाने, संवाद व सहयोग मजबूत करने और मतभेद दूर करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप और शी की बैठक में एआई पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देशों के बीच नंबर एक बनने की होड़ लगी है। इसके अलावा नवंबर में समाप्त होने वाले मौजूदा अमेरिका चीन व्यापार समझौते सहित आर्थिक व कारोबारी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संभावना है कि दोनों नेता ताइवान और ईरान के हालातों पर भी विचार विमर्श करेंगे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका चीन शिखर बैठक से पहले उन्होंने चीन को एआई संबंधी घटनाओं के बारे में नोटिफिकेशन तंत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। बेसेंट ने रविवार को न्यूयॉर्क में चीन के उप प्रधानमंत्री हु लिफांग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात की। बेसेंट ने बताया कि उन्होंने बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक की तैयारियों के तहत एआई और व्यापार पर चर्चा की। बेसेंट ने बताया कि अमेरिकी पक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाली एआई संबंधी घटनाओं के लिए अमेरिका चीन एआई संवाद नामक तंत्र का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की नंबर एक और नंबर दो एआई शक्तियों के बीच अधिक पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के शीर्ष राजनयिकों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु, अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ह्योन ने सोमवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें जारी हैं। मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि तीनों देश ठोस तरीकों से एक साथ काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि इस तरह का त्रिपक्षीय सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की कुंजी है। वे अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत प्रयासों और दक्षिण पूर्व एशिया में सीमा पार आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। तीनों ने इस बात की भी पुष्टि की कि वे हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर यानी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की योजना को गति देने में सहयोग करेंगे। उत्तर कोरिया के संबंध में मंत्रियों ने अपहरण मुद्दे के तत्काल समाधान के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने उत्तर कोरिया की साइबर संबंधी गतिविधियों से निपटने में त्रिपक्षीय सहयोग की भी पुष्टि की, जिनसे उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल विकास के लिए राजस्व उत्पन्न होता है। चीन को ध्यान में रखते हुए तीनों मंत्रियों ने चर्चा की कि क्षेत्र में बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से कैसे निपटा जाए। उन्होंने ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने पिछले महीने नेपाल में आए विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद के लिए जापान की ओर से दीर्घावधि सहायता की पेशकश की है। न्यूयॉर्क में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात के दौरान मोतेगी ने इस योजना के बारे में बताया। मोतेगी ने कहा कि जापान नेपाल के लिए हर संभव प्रयास करने का इरादा रखता है, जिसमें आपात उपायों के लिए समर्थन सहित मध्यावधि और दीर्घावधि सहायता भी शामिल है। मोतेगी ने नेपाल के पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए कई योजनाओं को तेजी से लागू करने का भी वायदा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात कही। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。अब
1: इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगी। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校 दे बोरांटिया ओ शिमास्ता।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सान नी आइताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता,
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
3: उतात्तारी
0: है क्रिया,
3: उताऊ
0: यानी गाना का,
3: तारी
0: रूप, और
3: ओदोत्तारी
0: है क्रिया,
3: ओदोरु
0: यानी नाचना का,
3: थारी
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: शिमास्ता
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: थारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा उतात्तारी ओदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमास्ता
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता। इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
6: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
6: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप और
6: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
6: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
6: शिताई देस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
6: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
6: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
6: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
6: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
6: ओयोइदारी। ओयोइदारी
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: काइमोनो वो शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइशो।
6: ओइशो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
6: ओइशो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
6: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
6: ओइशो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पाफे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
0: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयाँ और नमकीन भी शामिल हैं।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्ट केक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
0: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
1: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
0: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
7: रेडियो निप्पन देस। टोक्यो करा ओकुरी शिमासु।
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 22 सितंबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के खांतो और टोक्यो के द्वीपीय क्षेत्रों में दुचियन तूफान के कारण रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई है, जिसके चलते व्यापक इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन के मामले पेश आए हैं। ये तूफान अब जापान से दूर जा रहा है, लेकिन मौसम अधिकारी लोगों से उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। मंगलवार सुबह चिबा प्रीफेक्चर स्थित साकुरा शहर के एक आवासीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। कानागावा और चिबा प्रीफेक्चरों में भूस्खलन के कई मामलों की खबर मिली है, जिनमें 6 लोग मारे जा चुके हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं। संभावना है कि वे महासभा से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत करेंगी। ताकाइची स्थानीय समयानुसार सोमवार रात न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर उतरी। प्रधानमंत्री के रूप में वे महासभा को पहली बार संबोधित करेंगी। जापान से रवाना होने से पहले ताकाइची ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं उत्तर कोरिया के अपहरण मुद्दे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के महत्व, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर बल देना चाहती हूँ। ताकाइची ने यह भी कहा कि वे एक मुक्त व खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की रचना की दिशा में जापान की अग्रणी भूमिका निभाने की मंशा व्यक्त करना चाहती हैं। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत करने, ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग करने और एआई व अन्य प्रौद्योगिकी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने जैसे क्षेत्रों पर बल दिया। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के लिए बुधवार से शुक्रवार तक अमेरिका की राजकीय यात्रा करेंगे। ये दोनों नेताओं के बीच इस साल की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले मई में ट्रंप ने चीन की यात्रा की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेता प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि 6 महीनों के भीतर दोनों राष्ट्रपतियों की एक दूसरे के देशों की यात्राएं ऐतिहासिक महत्व वाला मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि चीन सामरिक स्थिरता के द्विपक्षीय रचनात्मक संबंधों के आयाम बढ़ाने, संवाद व सहयोग मजबूत करने और मतभेद दूर करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप और शी की बैठक में एआई पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देशों के बीच नंबर एक बनने की होड़ लगी है। इसके अलावा नवंबर में समाप्त होने वाले मौजूदा अमेरिका चीन व्यापार समझौते सहित आर्थिक व कारोबारी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संभावना है कि दोनों नेता ताइवान और ईरान के हालातों पर भी विचार विमर्श करेंगे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका चीन शिखर बैठक से पहले उन्होंने चीन को एआई संबंधी घटनाओं के बारे में नोटिफिकेशन तंत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। बेसेंट ने रविवार को न्यूयॉर्क में चीन के उप प्रधानमंत्री हु लिफांग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात की। बेसेंट ने बताया कि उन्होंने बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक की तैयारियों के तहत एआई और व्यापार पर चर्चा की। बेसेंट ने बताया कि अमेरिकी पक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाली एआई संबंधी घटनाओं के लिए अमेरिका चीन एआई संवाद नामक तंत्र का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की नंबर एक और नंबर दो एआई शक्तियों के बीच अधिक पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के शीर्ष राजनयिकों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु, अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ह्योन ने सोमवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें जारी हैं। मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि तीनों देश ठोस तरीकों से एक साथ काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि इस तरह का त्रिपक्षीय सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की कुंजी है। वे अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत प्रयासों और दक्षिण पूर्व एशिया में सीमा पार आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। तीनों ने इस बात की भी पुष्टि की कि वे हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर यानी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की योजना को गति देने में सहयोग करेंगे। उत्तर कोरिया के संबंध में मंत्रियों ने अपहरण मुद्दे के तत्काल समाधान के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने उत्तर कोरिया की साइबर संबंधी गतिविधियों से निपटने में त्रिपक्षीय सहयोग की भी पुष्टि की, जिनसे उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल विकास के लिए राजस्व उत्पन्न होता है। चीन को ध्यान में रखते हुए तीनों मंत्रियों ने चर्चा की कि क्षेत्र में बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से कैसे निपटा जाए। उन्होंने ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने पिछले महीने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद के लिए जापान की ओर से दीर्घावधि सहायता की पेशकश की है। न्यूयॉर्क में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात के दौरान मोतेगी ने इस योजना के बारे में बताया। मोतेगी ने कहा कि जापान नेपाल के लिए हर संभव प्रयास करने का इरादा रखता है, जिसमें आपात उपायों के लिए समर्थन सहित मध्यावधि और दीर्घावधि सहायता भी शामिल है। मोतेगी ने नेपाल के पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए कई योजनाओं को तेजी से लागू करने का भी वायदा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात कही। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूँ चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूँ सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगीं। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校でボランティアをしました।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सानी आईताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: 一緒に
0: का अर्थ है साथ में,
3: 歌ったり
0: है क्रिया,
3: 歌う
0: यानी गाना का,
3: たり
0: रूप, और
3: 踊ったり
0: है क्रिया,
3: 踊る
0: यानी नाचना का,
3: たり
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: しました
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: तारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा, उतात्तारी ओदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है, इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता,
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता। 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास
1: का अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
6: हाइकिंग वो शितारी
1: है।
6: हाइकिंग वो सुरु
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप, और
6: ओनसेन नी हाइतारी
1: है।
6: ओनसेन नी हाइरु
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
6: शिताई देसु
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
6: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देसु। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देसु।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
6: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
6: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
6: उमी दे ओयोग। उमी दे ओयोग
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
6: ओयोइदारी। ओयोइदारी।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: काइमोनो वो शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइसो।
6: ओइसो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
6: ओइसो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
6: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
6: ओइसो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पार्फे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
0: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयाँ और नमकीन भी शामिल हैं।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्टकेक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
0: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
1: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
0: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अमरीका और चीन के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली सरबराही मुलाकात से कबल मस्नूई जहानत एआई से मुतल्लिका वाकयात पर चीन के साथ एक नोटिफिकेशन मैकेनिज्म की तजवीज़ दी है। बेसेंट ने न्यूयॉर्क में चीन के नायब वजीर आजम हा लीफिंग से इतवार के रोज मुलाकात के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू की। वजीर खजाना ने कहा कि दोनों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान जुमेरात के रोज वाशिंगटन में सरबराही मुलाकात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर एआई और तजारत पर तबादला ख्याल किया। बेसेंट ने इंकशाफ किया कि अमरीकी फरीक ने एआई से मुतल्लिका ऐसे वाकयात के लिए अमरीका चीन एआई मकालमे की तजवीज़ पेश की जो कौमी सलामती को मुतासर कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में नंबर एक और नंबर दो एआई ताकतों के दरमियान ज्यादा शफाफियत की हर तरफ बढ़ना बहुत अहम है। माफ कीजिएगा, उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में नंबर एक और नंबर दो एआई ताकतों के दरमियान ज्यादा शफाफियत की तरफ बढ़ना बहुत अहम है। जापान अमरीका और जनूबी कोरिया के आला सफारतकारों ने शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अपने अज़्म का इरादा किया है। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सू, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा चो ह्यून ने पीर को न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जहां अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास जारी हैं। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि तीनों ममालिक अमली तौर पर मिलकर काम जारी रखेंगे, क्योंकि उनका सेफरीकी तावुन हिंद बहरुल काहिल में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। उन्होंने बैन अलाक़वामी आफात से मुतालिक इमदादी कोशिशों और जनूब मशरिकी एशिया में सरहद पार मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ इकदामात में तावुन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया। तीनों ममालिक ने अगली नस्ल के जौहरी रिएक्टर यानी मयारी रिएक्टर को हिंद बहरुल काहिल और दीगर खित्तों को भेजने के मंसूबे को तेज करने के लिए तआवुन का भी इरादा किया। शुमाली कोरिया के हवाले से मज़कूरा ओहदेदारों ने अगवा के मामलात के फौरी हल के साथ साथ अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया। उन्होंने शुमाली कोरिया की साइबर से मुतालिक सरगर्मियों से निमटने के लिए सेफरीकी तआवुन की भी तौसीख की, जिनसे हासिल होने वाली आमदनी मुल्क की जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल तरक्की में इस्तेमाल होती है। चीन को मद्देनजर रखते हुए तीनों ओहदेदारों ने खित्ते की सूरतहाल से निमटने के तरीकों पर बातचीत की, जहां ताकत या दबाव के जरिए मुसलमा हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिशें देखी जा रही हैं। उन्होंने अपनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। जापानी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता माह के तबाहकुन अचानक आने वाले सैलाबी रेले से मुतासरा नेपाल की बहाली के लिए तवील मुद्दत तक मदद जारी रखने के टोक्यो के इरादे का इजहार किया है। मोतेगी तोशिमित्सू ने पीर को न्यूयॉर्क

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 22 सितंबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान के खांतो और टोक्यो के द्वीपीय क्षेत्रों में दुचियन तूफान के कारण रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई है, जिसके चलते व्यापक इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन के मामले पेश आए हैं। ये तूफान अब जापान से दूर जा रहा है, लेकिन मौसम अधिकारी लोगों से उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह कर रहे हैं। मंगलवार सुबह चिबा प्रीफेक्चर स्थित साकुरा शहर के एक आवासीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पानी भर गया। कानागावा और चिबा प्रीफेक्चरों में भूस्खलन के कई मामलों की खबर मिली है, जिनमें 6 लोग मारे जा चुके हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं। संभावना है कि वे महासभा से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी बातचीत करेंगी। ताकाइची स्थानीय समयानुसार सोमवार रात न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर उतरी। प्रधानमंत्री के रूप में वे महासभा को पहली बार संबोधित करेंगी। जापान से रवाना होने से पहले ताकाइची ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं उत्तर कोरिया के अपहरण मुद्दे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों के महत्व, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर बल देना चाहती हूं। ताकाइची ने यह भी कहा कि वे एक मुक्त व खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की रचना की दिशा में जापान की अग्रणी भूमिका निभाने की मंशा व्यक्त करना चाहती हैं। उन्होंने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत करने, ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग करने और एआई व अन्य प्रौद्योगिकी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने जैसे क्षेत्रों पर बल दिया। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता के लिए बुधवार से शुक्रवार तक अमेरिका की राजकीय यात्रा करेंगे। ये दोनों नेताओं के बीच इस साल की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले मई में ट्रंप ने चीन की यात्रा की थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने पत्रकारों को बताया कि दोनों नेता प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि 6 महीनों के भीतर दोनों राष्ट्रपतियों की एक दूसरे के देशों की यात्राएं ऐतिहासिक महत्व वाला मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि चीन सामरिक स्थिरता के द्विपक्षीय रचनात्मक संबंधों के आयाम बढ़ाने, संवाद व सहयोग मजबूत करने और मतभेद दूर करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप और शी की बैठक में एआई पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देशों के बीच नंबर एक बनने की होड़ लगी है। इसके अलावा नवंबर में समाप्त होने वाले मौजूदा अमेरिका चीन व्यापार समझौते सहित आर्थिक व कारोबारी मुद्दों पर भी चर्चा होगी। संभावना है कि दोनों नेता ताइवान और ईरान के हालातों पर भी विचार विमर्श करेंगे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका चीन शिखर बैठक से पहले उन्होंने चीन को एआई संबंधी घटनाओं के बारे में नोटिफिकेशन तंत्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। बेसेंट ने रविवार को न्यूयॉर्क में चीन के उप प्रधानमंत्री हु लिफांग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात की। बेसेंट ने बताया कि उन्होंने बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक की तैयारियों के तहत एआई और व्यापार पर चर्चा की। बेसेंट ने बताया कि अमेरिकी पक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाली एआई संबंधी घटनाओं के लिए अमेरिका चीन एआई संवाद नामक तंत्र का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की नंबर एक और नंबर दो एआई शक्तियों के बीच अधिक पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के शीर्ष राजनयिकों ने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु, अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ह्योन ने सोमवार को न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकें जारी हैं। मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि तीनों देश ठोस तरीकों से एक साथ काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि इस तरह का त्रिपक्षीय सहयोग हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की कुंजी है। वे अंतर्राष्ट्रीय आपदा राहत प्रयासों और दक्षिण पूर्व एशिया में सीमा पार आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों के लिए सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। तीनों ने इस बात की भी पुष्टि की कि वे हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में अगली पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर यानी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाने की योजना को गति देने में सहयोग करेंगे। उत्तर कोरिया के संबंध में मंत्रियों ने अपहरण मुद्दे के तत्काल समाधान के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने उत्तर कोरिया की साइबर संबंधी गतिविधियों से निपटने में त्रिपक्षीय सहयोग की भी पुष्टि की, जिनसे उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल विकास के लिए राजस्व उत्पन्न होता है। चीन को ध्यान में रखते हुए तीनों मंत्रियों ने चर्चा की कि क्षेत्र में बल या दबाव के माध्यम से यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के प्रयासों से कैसे निपटा जाए। उन्होंने ताइवान जल डमरू मध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर बल दिया। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने पिछले महीने नेपाल में आए विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद के लिए जापान की ओर से दीर्घावधि सहायता की पेशकश की है। न्यूयॉर्क में सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात के दौरान मोतेगी ने इस योजना के बारे में बताया। मोतेगी ने कहा कि जापान नेपाल के लिए हर संभव प्रयास करने का इरादा रखता है, जिसमें आपात उपायों के लिए समर्थन सहित मध्यावधि और दीर्घावधि सहायता भी शामिल है। मोतेगी ने नेपाल के पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए कई योजनाओं को तेजी से लागू करने का भी वायदा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात कही। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 30वें पाठ में आप सीखेंगे कई क्रियाएं एक साथ बताना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ एक कैफे में आई है। ताम मिया को जापानी छात्र यूकी के बारे में बता रही है जो संगीत का अध्ययन कर रहा था।
0: तो आइए सुनते हैं 30वें पाठ की बातचीत।
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास। ओइशो।
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
4: वियतनाम देस। 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले कैफे कर्मचारी ने दोनों को पार्फे देते हुए कहा,
2: मेरोन पफे दे गोजाइमास।
1: ये लीजिए मेरोन पफे।
0: पार्फे देखकर ताम उत्सुकता से बोली,
2: ओइशो,
1: स्वादिष्ट लग रहे हैं।
0: दोनों पार्फे खाने लगी। फिर मिया ने पूछा,
3: ताम, यूकी-सान तो दोको दे आत्ता नो?
1: ताम, तुम यूकी जी से कहाँ मिली थी?
0: ताम ने उत्तर दिया,
4: वियतनाम देस।
1: वियतनाम में।
4: 小学校 दे बोरांटिया ओ शिमास्ता।
1: हम एक प्राथमिक स्कूल में स्वयं सेवी थे।
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: साथ में गाने गाते थे और नाचते थे।
0: ये सुनकर मिया ने कहा,
3: सो दत्ता नो।
1: अच्छा।
0: फिर ताम ने आगे कहा,
4: हाय, यूकी-सान नी आइताई देस।
1: हाँ, यूकी जी से मिलना चाहती हूँ।
0: लगता है ताम और यूकी को स्कूल के बच्चों के साथ नाचने गाने में बहुत मजा आता था। अगर दोनों फिर से एक दूसरे से मिल पाए तो कितना अच्छा होगा।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमास्ता।
1: यानी साथ में गाने गाते थे और नाचते थे। ये वाक्य सीखकर आप कई क्रियाओं के बारे में एक साथ बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: इश्शो नी
0: का अर्थ है साथ में,
3: उतात्तारी
0: है क्रिया,
3: उताउ
0: यानी गाना का,
3: तारी
0: रूप, और
3: ओदोत्तारी
0: है क्रिया,
3: ओदोरू
0: यानी नाचना का,
3: थारी
0: रूप, और वाक्य के अंत में लगा है
3: शिमाश्ता
0: जिसका मतलब है किया।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कई क्रियाओं में से कुछ के उदाहरण देते समय क्रिया के
3: थारी
1: रूप का उपयोग करते हैं। तारी रूप बनाने के लिए पहले क्रिया का ते रूप बनाइए और फिर उसमें से ते हटाकर तारी जोड़िए।
0: जैसे इस वाक्य में ताम बता रही है कि स्वयं सेवियों के तौर पर वो और यूकी साथ में बहुत सारे काम करते थे, जिनमें से दो उदाहरण हैं गाना और नाचना। इसलिए ताम ने कहा उतात्तारी ओदोत्तारी।
1: और क्योंकि ये पुरानी बात है इसलिए ताम ने वाक्य के अंत में लगाया
3: शिमाश्ता
1: जो करना का भूतकाल रूप है।
0: तो अब आप भी ये वाक्य सुनकर साथ साथ उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता। इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा,
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
0: होक्काइडो में क्या करने वाले हैं?
1: यहाँ
3: होक्काइडो दे
1: का अर्थ है होक्काइडो में और
3: नानी ओ शिमास का
1: अर्थ है क्या करने वाले हैं। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
5: हाइकिंग ओ शितारी ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: हाइकिंग करना चाहता हूँ और ओनसेन में नहाना चाहता हूँ।
6: हाइकिंग वो स्टारी
1: है।
6: हाइकिंग वो सुर
1: यानी हाइकिंग करना का तारी रूप और
6: ओनसेन नी हाइटारी
1: है।
6: ओनसेन नी हाइर
1: यानी ओनसेन में नहाने का तारी रूप।
0: इस वाक्य में दूसरे आदमी ने अपनी इच्छा बताई, इसलिए उसने वाक्य के अंत में लगाया
6: स्टाई डेस
0: यानी करना चाहता हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि तारी का इस्तेमाल पुरानी बात बताने के लिए भी किया जा सकता है और भविष्य की बात या इच्छा बताने के लिए भी।
1: तो वाक्य सुनिए और साथ साथ दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
6: हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस। हाइकिंग वो शितारी ओनसेन नी हाइतारी शिताई देस।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप ओकिनावा घूमने गए थे और किसी ने आपसे पूछा कि आपने वहां पर क्या किया। आप उन्हें बताना चाहते हैं कि खरीदारी की और समुद्र में तैराकी की।
1: खरीदारी करना को जापानी भाषा में कहते हैं
6: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु
1: क्रिया सुरु यानी करना का तारी रूप है
6: शितारी।
1: और समुद्र में तैरना को जापानी भाषा में कहेंगे
6: उमी दे ओयोग। उमी दे ओयोग
1: क्रिया तैरना का तारी रूप है
6: ओयोइदारी। ओयोइदारी
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: काइमोनो ओ शितारी उमी दे ओयोइदारी शिमाशिता।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी इसे याद कर लीजिए।
2: ओइशो।
6: ओइशो
0: का अर्थ है स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आपने कोई चीज अभी तक नहीं खाई है और वो दिखने में स्वादिष्ट लग रही है तो आप कहेंगे
6: ओइशो।
0: कोई चीज खाकर अगर स्वादिष्ट लगे तो कहेंगे
6: ओइशी।
1: अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
6: ओइशो।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
7: काइटो नी ओमाकासे।
1: अब हम लेकर आए हैं अंश काइटो के साथ खाना पीना। आज के पाठ में ताम और मिया ने मेरोन पार्फे खाया, इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की मिठाइयों और नमकीन के बारे में।
0: जापान में मिठाइयों और नमकीन में बहुत विविधता देखने को मिलती है। इनमें जापान की पारंपरिक मिठाइयां और नमकीन के अलावा पश्चिमी शैली की मिठाइयाँ और नमकीन भी शामिल हैं।
1: लेकिन पश्चिमी शैली की बहुत सारी मिठाइयाँ भी यहाँ जापान के रंग में ढल चुकी हैं। जैसे जापान के शॉर्ट केक का उदाहरण लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक जैसा दिखता है, लेकिन इसमें स्पंज केक का इस्तेमाल होता है।
0: कुछ आम जापानी मिठाइयाँ और नमकीन हैं चावल की टिक्कियाँ, चावल के पापड़ और लाल मूंग के मीठे पेस्ट भरे बन। इनके अलावा मौसमी विशिष्टताएं भी हैं, जैसे गर्मियों में तरह तरह की बर्फ की चुस्कियां और सर्दियों में लाल मूंग का मीठा सूप।
1: जापान की मिठाइयां सुंदर दिखने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वसंत में चेरी के फूलों और पत्तों वाली चावल की टिक्कियां और गर्मियों में सितारों जड़े आसमान या साफ नदी जैसी छवियों पर आधारित ताजगी भरी मिठाइयां बहुत आकर्षक लगती हैं।
0: जापान में आप भी यहाँ की मिठाइयों की खूबसूरती और स्वाद का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में जापान की पॉप संस्कृति का जानकार माइक हारुसान हाउस आएगा। तब तक के लिए सायोनारा।
8: रेडियो जापान टोक्यो।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने अमरीका और चीन के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली सरबराही मुलाकात से कबल मस्नूई जहानत एआई से मुतल्लिका वाकयात पर चीन के साथ एक नोटिफिकेशन मैकेनिज्म की तजवीज़ दी है। बेसेंट ने न्यूयॉर्क में चीन के नायब वजीर आजम हा लीफिंग से इतवार के रोज मुलाकात के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू की। वजीर खजाना ने कहा कि दोनों ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान जुमेरात के रोज वाशिंगटन में सरबराही मुलाकात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर एआई और तजारत पर तबादला ख्याल किया। बेसेंट ने इंकशाफ किया कि अमरीकी फरीक ने एआई से मुतल्लिका ऐसे वाकयात के लिए अमरीका चीन एआई मकालमे की तजवीज़ पेश की जो कौमी सलामती को मुतासिर कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में नंबर एक और नंबर दो एआई ताकतों के दरमियान ज्यादा शफाफियत की हर तरफ बढ़ना बहुत अहम है। माफ कीजिएगा, उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया में नंबर एक और नंबर दो एआई ताकतों के दरमियान ज्यादा शफाफियत की तरफ बढ़ना बहुत अहम है। जापान अमेरिका और जनूबी कोरिया के आला सफारतकारों ने शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अपने अज़्म का इरादा किया है। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सु, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा चो ह्यून ने पीर को न्यूयॉर्क में मुलाकात की, जहां अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास जारी हैं। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि तीनों ममालिक अमली तौर पर मिलकर काम जारी रखेंगे, क्योंकि उनका सेफरीकी तावुन हिंद बहरुल काहिल में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। उन्होंने बैन अलाक्वामी आफात से मुतालिक इमदादी कोशिशों और जनूब मशरकी एशिया में सरहद पार मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ इकदामात में तावुन को फरोग देने पर इत्तेफाक किया। तीनों ममालिक ने अगली नस्ल के जौहरी रिएक्टर यानी मयारी रिएक्टर को हिंद बहरुल काहिल और दीगर खित्तों को भेजने के मनसूबे को तेज करने के लिए तावुन का भी इरादा किया। शुमाली कोरिया के हवाले से मजकूरा अहदेदारों ने अगवा के मामलात के फौरी हल के साथ साथ अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के मुकम्मल खात्मे के लिए अपने अज़्म का इरादा किया। उन्होंने शुमाली कोरिया की साइबर से मुतालिक सरगर्मियों से निमटने के लिए सेफरीकी तावुन की भी तौसीख की, जिनसे हासिल होने वाली आमदनी मुल्क की जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल तरक्की में इस्तेमाल होती है। चीन को मद्देनजर रखते हुए तीनों अहदेदारों ने खित्ते की सूरतहाल से निमटने के तरीकों पर बातचीत की, जहां ताकत या दबाव के जरिए मुसलमा हैसियत को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिशें देखी जा रही हैं। उन्होंने अपनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। जापानी वजीर खारजा ने गुज़िश्ता माह के तबाहकुन अचानक आने वाले सैलाबी रेले से मुतासरा नेपाल की बहाली के लिए तवील मुद्दत तक मदद जारी रखने के टोक्यो के इरादे का इजहार किया है। मोतेगी तोशिमित्सु ने पीर को न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर नेपाल के वजीर खारजा शिसर खनाल से मुलाकात के दौरान उन्हें इस मंसूबे से आगाह किया। मोतेगी ने कहा कि जापान नेपाल के लिए जो भी मुमकिन हो करने का इरादा रखता है, जिसमें हंगामी इकदामात के लिए इमदाद के साथ साथ दरमियानी और तवील मुद्दती तावुन शामिल है। मोतेगी ने मुतादित इकदामात पर मुसलसल अमल दरामद के जरिए नेपाल की कौमी तामीर की कोशिशों के लिए भी मदद का वादा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे की तरक्की और घरेलू सनतों को फरोग देने का जिक्र किया। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: ड्रिंक करना की तारी शक्ल है। इसी तरह ओनसेन नी हाई तारी, दरअसल फेल ओनसेन नी हायरू यानी गर्म चश्मे में गुसल करना की तारी शक्ल है। इस जुमले में चूंकि बोलने वाला शख्स माजी के अफाल की नहीं बल्कि उन अफाल की बात कर रहा है जो वो करना चाहता है, इसलिए उसने आखिर में श्ताइदेस का इस्तेमाल किया। इससे ये बात वाजह है कि मुख्तलिफ कामों की मिसाल देते हुए फेल की तारी शक्ल का इस्तेमाल माजी के लिए भी किया जा सकता है और मुस्तकबिल के लिए भी।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
2: हाइकिंग वो शतरी ओनसेन नी हाइतरी श्ताइदेस। हाइकिंग वो शतरी ओनसेन नी हाइतरी श्ताइदेस।
0: अब फर्ज करें कि ओकिनावा की सयाहत के बाद कोई आपसे पूछता है कि आपने वहां क्या किया। आप बताना चाहते हैं कि आपने शॉपिंग और समंदर में तैराकी वगैरह की। शॉपिंग करने की जापानी है
2: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु।
0: सुरु की तारी शक्ल होगी श्तारी। इसी तरह समंदर में तैरने को कहते हैं
2: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु।
0: इसमें ओयोगु की तारी शक्ल होगी
2: ओयोइदारी। ओयोइदारी।
0: तो सामीन कोशिश करें। और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के लफ्ज मकालमे में ताम ने पार्फे को देखकर इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लीजिए। ओइशिसो, ये पकवान लजीज लगने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। खाने के दौरान अगर पकवान वाकई लजीज हो तो ओइशी कहेंगे, और खाने से कबल अगर खाने की चीज देखने में लजीज महसूस हो रही हो तो कहेंगे ओइशिसो।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
3: ओइशिसो।
4: ओइशिसो।
5: ओइशिसो।
1: अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
2: ओइशिसो।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपनी वियतनाम की यादों को दोहराती है।
3: मेरोन पफे दे गुजाइमस।
5: ओइशिसो।
6: ताम, युकी सान तो दोको दे आत्ता नो?
7: वियतनाम देस। शोगक्को दे बोलंटिया ओ शिमाशिता। इश्शो नी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाशिता।
6: सो दत्ता नो?
7: हाई।
1: और अब खानों के शौकीन काइतो के मशवरों का कॉर्नर। आज का मौजू है जापानी स्नैक्स और मिठाइयाँ। जापान में रिवायती जापानी या मगरबी वगैरह मुख्तलिफ इकसाम की मिठाइयाँ दस्तयाब हैं।
0: जी हाँ, लेकिन मगरबी मिठाइयों में भी अक्सर जापान के लिहाज से तब्दील शुदा है। मसलन स्पॉन्ज केक पर क्रीम की तय और स्ट्रॉबेरी वाला शॉर्ट केक। वैसे हेरा, आपको कौन सी जापानी मिठाई पसंद है?
1: मुझे चावल से बनी मिठाई मोची पसंद है।
0: रिवायती जापानी मिठाइयों और स्नैक्स में चावल के केक, चावल के क्रैकर्स और फलियों के पेस्ट वाले बन वगैरह शामिल हैं जो सारा साल दस्तियाब होते हैं, जबकि बाज मौसमी चीजें भी होती हैं, मसलन गर्मियों में बर्फ के गोले और सर्दियों में सुर्ख फलियों का सूप वगैरह।
1: इनके अलावा जापान में मशरकी और मगरबी जायकों के इम्तिजाज वाली मिठाइयाँ भी हैं, जैसे मच्चा के जायके वाला केक।
0: अक्सर जापानी मिठाइयाँ और स्नैक्स देखने में भी खुशनुमा होते हैं। मौसम बहार में चेरी के फूल मरकजी मौजू होते हैं। मौसम गर्मा की बाद मिठाइयाँ तारों भरे आसमान या शफाफ नदी जैसे लगते हैं। पार्फे भी रंग बिरंगे फलों की काशों की वजह से आंखों को भला लगता है।
1: उम्मीद है आप जापानी मिठाइयों की खुशनुमाई और जायके दोनों से लुत्फ अंदोज होंगे।